ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे की तवानाई तनसीबात पर हमले रोकने पर इत्तेफाक किया है। ट्रंप ने इतवार को सोशल मीडिया पर लिखा, फौरी तौर पर मुअसर रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में दोनों फरीकों ने तवानाई की जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है, इसकी खिलाफ वर्जी ना की जाए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी मीडिया को बताया कि यह ऐलान उनके लिए खबर है। इतवार को एक वीडियो पैगाम में ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन रूसी तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले करने से बाज रहने के लिए तैयार है और हम रूस की तरफ से इसी चीज के लिए तैयार होने पर भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा कि ये जरूरी है कि तवानाई की जंग बंदी हकीकत बन जाए। ज़ेलेंस्की ने मजीद कहा कि बदकिस्मती से यूक्रेनी फजा मुसलसल रूसी ड्रोन्स की जद में रही है और ये कि खारकीफ में तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमला हुआ है। ट्रंप यूक्रेन से रूस में ऑयल रिफाइनरियों पर हमले रोकने के लिए कह रहे हैं। वो कहते हैं कि इस तरह के हमलों से डीजल की शदीद किल्लत हो जाएगी। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी शुरू होने के एक साल बाद भी गजा में इसराइली हमले जारी हैं। फलस्तीनी मीडिया की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हफ्ते की शाम इसराइली ड्रोन हमले में एक शख्स हलाक और इतवार को इसराइली फायरिंग में एक हामिला खातून समेत 8 दीगर जख्मी हो गए। 2 साल की लड़ाई के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कयादत में एक अमन मंसूबे ने जंगबंदी का मुआहदा तश्कील दिया जो गुज़श्ता साल 10 अक्टूबर को नाफिस हुआ। तहम इसराइली फौज वक्फे वक्फे से हमले करती रहती है और ये दावा करती है कि हमास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी तंजीम दोबारा मुनज़म करने की कोशिश कर रही है। गजा के सेहत हुकाम ने इतवार को ऐलान किया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 7 अफराद हलाक हुए हैं, जिससे जंग बंदी शुरू होने के बाद से अब तक हलाक शुदगान की मजमुई तादाद 1488 हो गई है। मकामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरीन में 450 से ज्यादा खवातीन और बच्चे थे। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस ने एक बयान में कहा कि जंगबंदी से कुछ राहत मिली है लेकिन अभी तक तहफ्फुज या मुनासिब इंसानी इमदाद नहीं मिली। उन्होंने तमाम फरीकों पर जोर दिया कि वो अमन मंसूबे पर पेशरफ्त करें। अमन मंसूबे के दूसरे मरहले में हमास को गैर मुसल्ला करने और गजा से इसराइली फौजियों के इनखला का मुतालबा किया गया है। हम इन इकदाम पर दोनों फरीकों का मौकिफ मुतसाद है, जिसकी वजह से पेशरफ्त का अंदाजा लगाना मुश्किल है। नेपाल में अचानक आए एक और बड़े सैलाब से 5 अफराद लापता हो गए हैं। नेपाली फौज मुतासरा इलाकों में तलाश और बचाव की कार्रवाइयां कर रही है। फौज का कहना है कि इतवार के रोज वस्ती जिले गोरखा में मट्टी का तोदा गिरने के बाद मट्टी और रेत

0: ने एक दरिया का बहाव रोक दिया। एसोसिएटेड प्रेस की फुटेज में देखा जा सकता है कि दरिया का कीचड़ आलूद पानी पहाड़ों से घिरी एक वादी का रुख कर रहा है, जिसकी वजह से करीबी रिहायशियों को बुलंद मकामात पर मुंतकिल होना पड़ा है। नेपाली हुकाम दरिया के किनारे रहने वालों से महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का कह रहे हैं। मकामी ज़राए इब्लाग का कहना है कि तकरीबन 40 मकानात और कई पुल बह गए और पानी से बिजली बनाने वाली एक तनसीब को नुकसान पहुंचा है। फौज का कहना है कि उसके दस्तों ने अब तक 40 से ज्यादा अफराद को बचा लिया है।
1: अब आज की अहम खबरों की सुर्खियां समाप्त फरमा लीजिए। जापान के वजीर ममलिकत बराए दिफा का कहना है कि शुमाली कोरिया ने पीर की सुबह कम अज कम 2 बैलिस्टिक मेजाइल दागे। उन्होंने बताया कि शुमाली कोरिया ने अपने अंदरूनी इलाके से शुमाल मशरक और मशरक की तरफ मेजाइल दागे हैं। बावर किया जाता है कि वो मुल्क के मशरकी साहिल और बहिर जापान के करीबी पानियों में गिरे। सऊदी अरब में हुक्काम का कहना है कि सऊदी दारुलहुकूमत रियाज के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर 2 दिनों में होने वाले दूसरे हमले में एक शख्स हलाक और 11 जख्मी हो गए हैं। यमन में हूसी बागियों का कहना है कि इस हमले के पीछे उनका हाथ है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और वीडियोस के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 12 अक्टूबर सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। जापान के रक्षा उपमंत्री ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने सोमवार सुबह कम से कम 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। कोयारी थाकाशी ने कहा कि उत्तर कोरिया ने अंतर्देशीय क्षेत्र से पूर्वोत्तर और पूर्व की ओर मिसाइलें दागी। माना जाता है कि ये मिसाइलें देश के पूर्वी तट और जापान सागर के पास के जल क्षेत्र में गिरी। उन्होंने कहा कि सुबह करीब 9:19 पर दागी गई पहली मिसाइल ने लगभग 20 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचते हुए करीब 220 किलोमीटर की दूरी तय। कोयारी ने बताया कि माना जा रहा है कि दूसरी मिसाइल सुबह करीब 9:36 पर प्रक्षेपित की गई। उसने लगभग 70 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचते हुए 910 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय। रक्षा उपमंत्री ने यह भी कहा कि जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया इस बात का भी विश्लेषण कर रहे हैं कि दूसरी मिसाइल अनियमित पथ पर उड़ सकती है या नहीं। उन्होंने कहा कि इन मिसाइलों के जापानी भूभाग या उसके अनन्य आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश करने की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि विमानों या जहाजों को हुए नुकसान की भी कोई खबर नहीं है। कोयारी ने कहा कि उत्तर कोरिया की कई हरकतें, जिनमें बार बार बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रक्षेपण शामिल है, जापान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ये जापानी नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने बताया कि जापान ने पेइचिंग स्थित दूतावास के माध्यम से उत्तर कोरिया से विरोध दर्ज कराते हुए इस हालिया घटना की निंदा की है। सऊदी अरब के अधिकारियों का कहना है कि राजधानी रियाद में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 2 दिनों के भीतर हुए दूसरे हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। यमन के हूती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह हमला रविवार को हुआ। अधिकारियों के अनुसार इस हवाई अड्डे पर एक दिन पहले हुए हमले में 12 लोग मारे गए थे और 300 से अधिक लोग घायल हो गए थे। हूती विद्रोहियों ने रविवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि उन्होंने सऊदी अरब द्वारा किए गए हवाई हमलों के जवाब में रियाद हवाई अड्डे पर हमला किया। हूती विद्रोहियों ने कहा कि उन्होंने सऊदी अरब के एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और एक सरकारी तेल कंपनी की सुविधाओं पर भी हमले किए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि मक्का और मदीना के पवित्र शहरों के हवाई अड्डों और वायु क्षेत्र को छोड़कर सऊदी अरब जाने वाली उड़ानें सुरक्षित नहीं हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने रविवार को सऊदी अरब के विदेश मंत्री शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से फोन पर बात की। खबरों के मुताबिक अराग़ची ने कहा कि ईरान सऊदी अरब और यमन के बीच बातचीत को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक समर्थन देने को तैयार है। माना जा रहा है कि सऊदी अरब रियाद हवाई अड्डे पर हुए सिलसिलेवार हमलों पर कड़ी प्रतिक्रिया देगा, जिससे तनाव और बढ़ने की आशंका है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे की ऊर्जा सुविधाओं पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया पर लिखा, रूस और यूक्रेन के बीच तत्काल प्रभाव से ऊर्जा संबंधी संघर्ष विराम लागू हो गया है, दोनों पक्ष सहमत हो गए हैं, इसका उल्लंघन ना होने पाए। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने अमेरिकी मीडिया को बताया कि ये घोषणा उनके लिए एक नई खबर थी। रविवार को एक वीडियो संदेश में जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन रूस की ऊर्जा अवसंरचनाओं पर हमला ना करने के लिए तैयार है और हम रूस से भी इसी तरह की तत्परता की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संघर्ष विराम का वास्तविकता में बदलना महत्वपूर्ण है। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि दुर्भाग्य से पूरे दिन यूक्रेनी आसमान पर रूसी ड्रोन मंडराते रहे और हार्किव में ऊर्जा अवसंरचना पर हमला हुआ। ट्रंप यूक्रेन से रूस स्थित तेल रिफाइनरियों पर हमले रोकने का आग्रह करते आए हैं। उनका कहना है कि ऐसे हमलों से डीजल की गंभीर कमी हो जाएगी। इसराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम लागू होने के एक साल बाद भी गाजा में इजरायली हमले जारी हैं। फिलिस्तीनी मीडिया के अनुसार शनिवार शाम इजरायली ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और रविवार को इजरायली गोलीबारी में एक गर्भवती महिला सहित 8 लोग घायल हो गए। 2 साल तक चले संघर्ष के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली शांति योजना के तहत पिछले साल 10 अक्टूबर को संघर्ष विराम समझौता लागू हुआ था। हालांकि इजरायली सेना ये दावा करते हुए लगातार रुक रुक कर हमले करती आई है कि हमास समझौते का उल्लंघन करते हुए गुट को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। गाजा पट्टी के स्वास्थ्य अधिकारियों ने रविवार को घोषणा की कि पिछले 24 घंटों में 7 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही संघर्ष विराम लागू होने के बाद से कुल मौतों की संख्या 1488 हो गई है। स्थानीय मीडिया के अनुसार मृतकों में 450 से अधिक महिलाएं और बच्चे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने एक वक्तव्य में कहा कि संघर्ष विराम से कुछ राहत मिली है, लेकिन सुरक्षा या पर्याप्त मानवीय सहायता अब तक नहीं मिल पाई है। उन्होंने सभी पक्षों से शांति योजना पर प्रगति करने का आह्वान किया। शांति योजना के दूसरे चरण में हमास के निरस्त्रीकरण और गाजा पट्टी से इजरायली सैनिकों की वापसी का आह्वान किया गया है, लेकिन इन कदमों को लेकर दोनों पक्षों में मतभेद बना हुआ है, जिससे प्रगति की संभावना कम दिख रही है। नेपाल में एक बार फिर अचानक भीषण बाढ़ आई है, जिसमें 5 लोग लापता हो गए हैं। नेपाल की सेना प्रभावित क्षेत्रों में खोज और बचाव अभियान चला रही है। सेना का कहना है कि भूस्खलन से निकली मिट्टी और रेत के कारण नदी का रास्ता अवरुद्ध हो जाने के बाद रविवार को मध्यवर्ती क्षेत्र गोरखा में मृदा स्खलन की घटना पेश आई। एसोसिएटेड प्रेस द्वारा जारी फुटेज में पहाड़ों से घिरी एक घाटी में नदी का मटमैला पानी तेजी से बहता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आसपास के निवासियों को ऊंची जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। नेपाली अधिकारी नदी के किनारे रहने वाले निवासियों से सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने का आह्वान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार लगभग 40 मकान और कई पुल बह गए और एक पनबिजली घर को नुकसान पहुंचा है। सेना का कहना है कि उसने अब तक 40 से अधिक लोगों को बचा लिया है। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है। ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।